बेशक हमारी नजर है फकत तेरे दर पर, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल है। या रब्बुल आलमीन, बेशक इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, हमें उसको समझ कर अमल पर होने की तौफीक अता फरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारी ज़िंदगियों में शामिल फरमाए। रब्बुल आलमीन, हमें दीन इस्लाम की बेहतरीन नमूना बना दे, दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा। रब्बुल आलमीन, बेशक हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मती है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर और अपनी मोहब्बत को हमारे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बड़ा कर दें, हमें अपना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दें। अगला कलाम कर जिक्र तू कलिमा तैयब का।

किसी को किसी के सामने मजबूर ना कर, जिसके घर में बीमारी है उसके घर के हर बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा, जो अस्पताल में है उसके लिए आसानी फरमा, जो दवा खा रहा है

बच्चे के लिए परेशान है, उसकी परेशानी दूर कर। जिस पिता के माथे पर अपने परिवार की चिंता है,

0: की खामोशी को भी सुन, जो सिर्फ इतना कह पाता है, उसे सुकून बिना का बोझ है, उसे सच्ची तौबा की तौफीक दे।
1: बेशक खूबसूरत दुआ थी ये, और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं कपूर साहब के लिए, जो अपने फैमिली मेंबर्स को भी बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी बहन अभी हाल ही में इंतकाल हो गई थी, तो दुआएं उनके लिए, सारे मरहूमों के लिए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके आला दर्जात जन्नत में बुलंद करे और उनके कब्र में नूर डाले। या रब्बुल आलमीन, तेरा वादा है कि गम ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, हम हाजिर है या अल्लाह, अब तो तू कुन कह दे, ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, अब तो रहमत के दरवाजे खोल दे या अल्लाह, हमें वो सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा जिसके हमने बहुत दुआएं मांगी है, हर इंसान की परेशानियों को ख़त्म कर, हमें हर उस चीज़ की खुशखबरी दे दे जिसकी दुआएं हम कर रहे हैं, और हमें हर उस चीज़ की खुशखबरी भी दे दे जिसकी दुआएं करना हम भूल गए हैं। या रब्बुल आलमीन, हम तुझसे बख्शिश की दुआएं सुहूर होकर करते हैं, तौबा का मतलब सिर्फ इस्तग़फ़ार नहीं है बल्कि तेरे सामने आजिज़ी और अमल की तब्दीली है या अल्लाह। या करीम, हमें सेहत वाली खुशहाल ज़िंदगी और खुशादा बरकत अता फरमा, और इज़्ज़त और ईमान वाली मौत अता फरमा या अल्लाह। फ़लस्तीन के लोगों की कुर्बानियों, जो उन्होंने अपनी जान, अपने मासूम बच्चों और ख़ानदानों की पेश की है, उसे कबूल फरमा और उनकी गैब से मदद व नुसरत फरमा या अल्लाह। पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तेफाक अता फरमा, फ़लस्तीन लोगों की गैब से मदद फरमा, नुसरत यहूदियों को नस्ता नाबूद कर दे और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा, बहुत लोग बीमार हैं, तो रब्बुल आलमीन से ये दुआएं कि उनको शिफाए काफिल अता फरमाओ और तमाम मरहूमैन की मगफिरत फरमाओ, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाओ। अगला कलाम, हर जर्रे में तेरा नूर है,

बस तू ही तू जी हाँ, उसकी रहमत से मायूस ना होना। और जब वो हमें बीमारियाँ या कुछ भी आजमाइशें देता है तो ये समझ के अपना लें कि उसकी रहमत ही सबसे बड़ी वसी है और हम उसी पे भरोसा करते हैं। और वो अगर हमें तकलीफ़ में डालता है तो उसके बाद आसानी भी देगा, अगर वो हमें बीमारी भी देता है तो उसके बाद शिफा भी वही देगा, ज़िंदगी देता है तो मौत भी वही देगा। कोई डॉक्टर कोई हकीम आपकी मौत नहीं रोक सकता। अगर आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है इस दुनिया में तो आपको उसके पास लौट कर जाना है उसी वक्त, ये एक हकीकत है। अगला कलाम जुनेद जमशेद साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें समझाया है कि हम इस दुनिया के मुसाफिर हैं।

बेशक मेरी आंखों में दुरूद, मेरी आंखों में मदीना, या रब्बुल आलमीन, जो जा चुके हैं उनकी उम्रा को कबूल कर, उम्रा मकबूल उनके लिए, और जो जाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दें, आमीन। और मैसेज है हमारी प्यारी बहन नईमा अहमद के लिए, नईमा नज़ीर अहमद, एंड उनकी सालगिरह, मेरी बहन है वो, बड़ी बहन नईमा नज़ीर अहमद, जिनकी सालगिरह 7 अक्टूबर को, और हमारी प्यारी सी नन्हे सी आयशा इस्माइल 8 अक्टूबर। मैं अल्लाह ग्रांड दे बोम मेनी मोर हैप्पी बर्थडेज विद गुड हेल्थ एंड ऑल द हैप्पीनेस एंड एंजॉय योर बिग डे। एंड दिस कम्स फ्रॉम दलवी अब्बास इस्माइल अहमद अलीफ एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। और एक बर्थडे मैसेज है हमारी प्यारी आयशा बीबी पाकर के लिए, जिनकी सालगिरह कल थी, और ये है शिराज पाकर की बेगम, तो इनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे, लंबी उम्र, और इनको ढेर सारी खुशियां दे। मुश्किल है क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें सब्र दे कि जब हम अपने छोटे बच्चों को जाता हुआ देखते हैं तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आयशा पा वो आपके लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है इंशाल्लाह। तो ये अगला कलाम जुहैब अशरफी साहब की आवाज़ में, वो मेरा नबी है।

बेशक कौसे आजम पीरा ने पीर हक में ये काफ़ी जो लोग बलियों के दीवाने हैं जो पीर मुर्शिद है इन्होंने काफ़ी ये कलाम इन्जॉय किया और फिर से मैसेजेस आए हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलाम है बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं ऐसे ही कलाम आपके लिए प्ले करती रहूं इंशाल्लाह अगला कलाम हमने लिया है एक ही बहुत ही खूबसूरत कपल है अब्दुल्ला और इकरा ये एक खूबसूरत खूबसूरत सुन्नत निभा पूरी कर चुके हैं निखा की सुन्नत और एक खूबसूरत जोड़े के लिए बहुत सारी दुआ है मैं इनको शादी मुबारक कहती हूँ मेरी तरफ से हम सब की तरफ से महफिल कवाले की टीम तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से अब्दुल्ला और इकरा सहर हुसैन ये अब्दुल्ला है नवासा लेट अम्मी गुलशन का और इकरा है पोती उनकी अम्मी गुलशन जो पाकिस्तान से है और जिन्होंने अपनी बेटियों की तरह मुझे प्यार दिया अब्दुल्ला बहुत ही नेक और वेरी ओबीडियंट एंड हैंडसम सन ऑफ जायद एंड नीलम एंड इकरा सहर हुसैन डॉटर ऑफ अल्ताफ एंड अफशीन ब्यूटीफुल एंड वेरी पायस गर्ल इकरा तो इनकी शादी हो चुकी है इनके लिए दुआ है रब्बुल आलमीन इस जोड़े को हमेशा सलामत रखे और इनकी झोलिया खुशियों से भरे इन्हें दुनिया आखिर दोनों दीन इनकी दीन और दुनिया की हर नियामत अता करें और ये जोड़ी तक कयामत तक सलामत रहे माशाल्लाह इनकी झोली खुशियों से भरे और बच्चों से भरे इनकी झोली इंशाल्लाह ये दुआ है हमारे लिए अब्दुल्ला और इकरा सहर हुसैन के लिए तो ये अगला कलाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में दूल्हे का सेहरा

जी हाँ, धड़कन धड़कन, ये फेमस कलाम नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में. और मैसेज आया है अजीज़ आपा की तरफ से, जो कहती है अस्सलामुअलैकुम टू ऑल लिसनर्स. द मैसेज गोज आउट टू फिरोजा हशवारे, हु इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. अल्लाह के शिफावत कामिला एंड टेक अवे योर पेन. वी मेक दुआ फॉर योर वेल बींग इंशाल्लाह. एंड इट कम्स फ्रॉम अहमद भाई, अजीज़ा भाई भटकर एंड फैमिली फ्रॉम क्रेवन बी स्टेट. सो ये मैसेज अजीज़ा आपा की तरफ से आया है हमारे उनके फिरोजा हशवारे के लिए. और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी हलीमा इलाही के लिए, जो बड़ी शौक से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, तो इनके लिए भी बहुत दुआ है. अल्लाह ताला इन्हें भी शफाए कामिल दे और इनका साया हमेशा अपने बच्चों पर. रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते प्यार हमदर्दी और इंसानियत के भी हैं. और ऐसे रिश्तों को हमें सराहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रिश्ते ना टूटे. तो अगला कलाम है तेरा मेरा रिश्ता.

जी हाँ, ये तेरा मेरा रिश्ता, ये हमारा आखिरी कलाम है। हमें शब्बीर साहब ने लाल झंडी बता दी है और एक मैसेज आया है इलाही साहब की तरफ से, जो कहते हैं उनकी वालिदा बीबी हलीमा और आमिरा इलाही उनकी बेटी और 5 महीने के लिए आना जो उनकी नवासी है और हमजा, एंड ही सेज वी आर 4 generations, में अल्लाह ब्लेस अस विद मोहब्बत। बेशक अल्लाह ताला का साया भी हमेशा आपके बच्चों पर रखे और आपके वालिदा हली बीबी हलीमा में भी। दुआएं हैं आपके लिए और आपके वालिदा के लिए। प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है। इसके बाद आप सुनेंगे इतना मत सता जगजीत सिंह की आवाज़ में और या अली मौला, और फिर कदम कदम पर ख्वाजा जी पे मनकबत होगी शब्बीर सदाकत साहब की आवाज़ में। शब्बीर सदाकत साहब जो आ रहे हैं केप टाउन, इंशाल्लाह बहुत जल्द दिसंबर में आएंगे, तो उनकी आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत कलाम होगा, टू इन्जॉय। इसके बाद मैं आपसे रुख्सत लेना चाहूँगी, अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, शब खैर, जज़ाकल्लाह खैर। और जाने से पहले मैं हमारे बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन के लिए शब्बीर जेकब्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। इनके लिए भी दुआ किया करें कि बहुत मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला इनका हर सपना कामिल पूरा करें। आमीन।

परवेश भाई, बली भाई, सरदार भाई, तमाम मेरे भाई जितने बैठे हुए सामने, सभी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ। ये दो मिसरे सुन लें, इसमें जो अकीदा है, जो यकीन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो मुलाहिज़ा फरमाएं।

0: हुजूर गरीब नमाज का तसव्वुर कर लें, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब ख्वाजा की बदौलत है, ख्वाजा की चौखट का सदका है।
1: बेशक

हमारे बच्चे जो खा रहे हैं, बेशक अली का बेटा खिला रहा है। तीसरा शेर लादा फरमाए, और इस शेर में हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं हुजूर गरीब नवाज का। हालांकि हमसे होगा नहीं, इतने एहसान हैं, मगर फिर भी कर रहे हैं शुक्रिया अदा।

एक शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, तमाम लोगों से तवज्जो, क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका ताजुल वरा की गुलामी में है। बाबा ताज के तमाम चाहने वाले बैठे हैं। अभी हाल ही में मेरे कड़ावर रिकॉर्ड हुआ सरकार की शान में, उसका एक शेर इसके अंदर दे रहा हूं। गिराने वाला गिराए कैसे, बचाने वाला बचा रहा है।

नागपुर से, भंडारा से, कामठी से, हर तरफ से लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं करीब नमाज के उर्सों में। गाड़ियां ले लेकर पहुंचते हैं फोर व्हीलर से। गुलामी ताज की, ताज की गुलामी में लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, समाज फरमाए। अली भाई, अमीन भाई, परवेश भाई सुनिएगा, आदिक भाई सुनना।

मैंने कहा जिन्हें लोग कहते हैं मस्तान शाह ये हीरा तो ख्वाजा की चौखट से निकला। अब तुम इसे सुनिए, अजमेर जाकर यहाँ के दीवाने ख्वाजा से करे हैं ख्वाजा।